0: इदानीम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीम् वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनहि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डॉनल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडिमेप 93.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्जको तरंगमा हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। समयसफल हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानको 7:05 अनि केही सेकेण्ड गएको छ र यो समय हो कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिजको। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिजलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहनुभएका तमाम अति आदरणीय संगीत प्रेमी श्रोता महानुभावहरूमा हामी हार्दिक स्वागत तथा न्यानो न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं। श्रोता, कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिज अन्तर्गत यहाँहरूलाई सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू सुनाउने गर्दछौं। कार्यक्रमको पहिलो गीतलाई लिएका छौं चलचित्र किस्मतबाट। आशा भोसलेको शर्मा सन् 1968 मनमोहन देसाईद्वारा निर्माण तथा निर्देशित यस फिल्ममा ओपी नायरको संगीत साथै विश्वजीत बबिता हेलेन आदि कलाकारहरूको अहम भूमिका रहेको पाइन्छ।

0: 아기 사흘이.
1: 응.
0: 어? 내일 줄게?
1: 나.
0: 펠레 बचत.
1: 펠레 줄게.
0: 수노. हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री. लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन.
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समय सर, हाम्रो स्टुडियोको घडी अनुसार बिहानको 7:25 हुन लागेको छ। अबको केही क्षणमा यहाँले सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी नेपाली भाषामा समाचार। केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोला।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा

0: मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G

0: से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: स्पेशली दी कंट्रीज लाइक आर्स।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश।

0: नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

बंदा ये हाजिर है जी, और आप भी हाजिर हैं। हमें पता है बहुत सारे मैसेजेस दिल का मेल बॉक्स में खुले पड़े हैं, इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि सबको पढ़ देना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। इस प्रोग्राम के आगे के प्रोग्राम भी खत्म हो जाएंगे, इतने सारे नाम हैं, फरमाइशें हैं, लेकिन आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम जितने नाम पढ़ सकते हैं उतने तो पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ हैं तो हम आपकी कद्र ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कोशिश करेंगे कि हम हर एक नाम पढ़ डालें, और अगर हो सके तो सभी गाने भी बजा डालें। लेकिन ऐसा सारा दिन आप सुनते रहिए, आपकी फरमाइशों के गाने भी आते ही रहेंगे, कुछ इस दिल का मेल बॉक्स में भी आ जाएंगे। और दिल का मेल बॉक्स ये AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विजय के साथ खुला हुआ है। आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक नंबर नोट नहीं किया था वो भी कर लें, 9868686753 ये व्हाट्सएप है नंबर, इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। अपना नाम भेजें, जगह का नाम भेजें तो काफी होगा। कोई गाने की फरमाइश भी आप भेजना चाहें, आपको लगे तो भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे। अगर सुनवा पाए तो कम से कम आपका नाम तो पढ़ देंगे ना। FM Gold AIR Delhi @gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप नंबर के अलावा इस पर भी भेज सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टिंग रहता है क्योंकि एकदम से खुल जाता है ना सामने सामने। खैर, तो पहला गाना पहले बजाऊं, वो भी एक फरमाइशी गीत है, और इतने सारे नाम पढ़ने तो कुछ नाम तो अभी पढ़ दिए जाएं। ये है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवराम दिग्दर्शन, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी, राजेश कुमार मोहन गार्डन दिल्ली से, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा, शीना नायर मंगलौर कर्नाटका से, हिमानी शर्मा सहारनपुर से, देवेंद्र अरोड़ा देहरादून से, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र शेख मूसा, राजकुमार बोडाना सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी रोहित, रितु मुकेश जगताप मजनू कटीला से, कमल बालूजा मधु सागर और सतना एमपी से, उमंग मलिक आकांक्षा माही ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी आराध्या साहू और पद्मा टाकिच नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र और वेद प्रकाश मोदी नगर गाजियाबाद से, इसके अलावा मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सोहेल हसन रशीद वारसी अनम यशफ और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान पूजा परिहार, इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है। इन सभी दोस्तों ने नहीं, इनमें से हमारे एक दोस्त ने बैजू बावरा का ये गाना सुनने के लिए, हमें भी पसंद है आपको भी पसंद है तो चलो हम दोनों को ही पसंद है तो सुन लेते हैं।

ये दोस्तों एक अगला गाना तो बहुत ही प्यारा आने वाला है हेमंत कुमार साहब की आवाज में, और हेमंत साहब आपके और हमारे पूरी दुनिया के मनपसंद गायकों में से एक हैं। इतनी रोमांटिक आवाज के साथ कुलदीप बग्गा ने दिल्ली गोविंदपुरी से उनकी फरमाइश भेजी, लेकिन उससे पहले हम कुछ और नाम पढ़ दें तो अच्छा होगा। उत्तम नगर वेस्ट से जयराम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु, कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, वारिया ताहिरा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, नवाब अहमद भारती, शबाना अरहान अहमद, सूफिया नवाब बलीमारान से, और पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला, बठिंडा रोड माही डबवाली से राजेंद्र नारंग और अंजू मोहित तानिया। आप में से कई दोस्त तो इतने पक्के हैं ना मैसेजेस भेजने में कि बस तैयार ही रहते हैं, एकदम से ठक से बटन दबाते हैं मैसेज सेंट, सब कुछ टाइप किया होता है ना। हमें भी आपके नाम याद होते जा रहे हैं। ये गाना सुनिए, इतना प्यारा गीत, बहुत दिन बाद मैंने मजबूर 1964 में आई थी, और सदाबहार रूमानी गाना जो हम सुनने जा रहे हैं, विश्वजीत और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना, इसको अपनी मखमली और जादुई आवाज में हेमंत कुमार ने गाया है। कल्याण जी आनंद जी की मशहूर जोड़ी ने इसका संगीत संयोजन किया है। आइए सुनते हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम फिर से दिल का मेल बॉक्स में। जोगी राम दंसना विलेज ओडिशा से मैसेज भेजते हैं और ये नाम बहुत नीचे है, फैसल इमाम मोहम्मद अफसल अकमल प्रवीण होदा, माफ कीजिए, जोहानुल होदा नफीसा प्रवीण, ये अररिया बिहार इयात कॉलोनी से मैसेज इन्होंने भेजा। और ये साहब हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से। फूल पत्ते बनाने के

बजाय ना दोस्तों अपना नाम सीधा लिखो और जगह का नाम लिखो तो आप उनको थोड़ा सा आसान होगा ना आपका नाम पढ़ना। क्या बोलता, जॉन डिकॉस्टा, रोजी डिकॉस्टा, पर्ल डिकॉस्टा, डिकॉस्टा विलिस, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने संदेशा भेजा है। और ये साहब कौन है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी है, और ये नुसरत बेगम, बेबी अरिबा, हबीबा, खलील कुरैशी, पटियाली रोड, गंज डुंडवारा, नाम लेने में मजा आ जाता है, उत्तर प्रदेश से, ये मोहल्ला चौहल्दा बागपत से संजय नमन और अपार ढींगिया। दोस्तों अपना नाम बार बार क्यों भेजते हैं आप, एक बार जो आपने अपना नाम भेज दिया काफी नहीं है। सुनील, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, मतलब आप तो हम चाहेंगे बार बार भेजें, लेकिन क्या है कि आपका नाम बार बार सामने आ जाता है तो फिर उन दोस्तों के नाम भी तो छूट जाते ना जो बेचारे पहली बार ही मैसेज भेजते हैं। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से इन लोगों ने मैसेज भेजा था जो नाम मैंने अभी पढ़े। इसके अलावा ये है साहब अनिल मोहन, उषा, टिल्लू, मधु, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांढा से, और ये साहब है रघुवीर नगर से, कौन क्या नाम है, दीपू, विक्की, पुनाराम और यश, धूमधारा, ये कोई नाम है, इनका सरनेम है। और ये साहब है इज्जत फिल्म से फरमाइश भेजिए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें आपका नाम पढ़ देते हैं। दतरेंगी भाटपाड़ा, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, ओ भाई साहब इतने सारे नाम, कितने सारे नाम, क्या क्या करें। गांव फ्रांसिस हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद, पुष्पेंद्र, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डोरी से बाबूराम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श, खलीफा, जिला सिरसा हरियाणा, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, देव अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू नव्या और सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन, शांतिनगर, सोनीपत से, झज्जर हरियाणा से, तो नाम आपका हमने पढ़ा ही था, बिट्टू भाटिया और रीटा का, संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर, कमल साहनी, भूतीराम हांडा, जोगिंदर पाल, मक्कड़, बिंगावाला चौक, गुराया, जलंधर से, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल बिट्टा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत कुमार, संचित वायाल, इतने नाम पढ़ूंगा ना दोस्तों तो हमें जो नए सुनने वाले हैं वो अपना बदल देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं हम नहीं जाने देने चाहते। रुकिए रुकिए, गाना सुनते जाइए, किशोर दा की आवाज में क्या शानदार गाना है, उसने बहुत प्यारा गाया था। और खास बात यह, इस गाने के पिक्चराइजेशन में धर्मेंद्र साहब की जो स्क्रीन पर मौजूदगी है ना दोस्तों, इसे कहते हैं मौजूदगी, क्या बात है, क्लासिक गाना, किशोर दा की भावपूर्ण आवाज, साहिल लुधियानवी का लिखा गहरा ये गाना और रवि की धुन।

क्या बात है साहब, क्या पुराने जमाने के दर्द भरे गाने। कुमार पृथ्वेश देशमुख प्रणाली सर्वत सानवी दतरेंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, अशोक मोहन उषा टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से, मधु नायक व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव द्वेंदु भूषण संस्कृति पौरुष संबल कांकेर से, फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी राजकोट से, रश्मि झरना भरत कुमार अलीका डबवाली बसंत सिंह चन्न कुलदीप गांधी गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम। दोस्तों इससे आगे नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगला गाना रात की फील वाला है, लेकिन इतना प्यारा लता जी का इतना मीठा गीत है कि बस दिन में भी बहुत सुकून देगा और आपको ये गाना सुनना ही चाहिए।

0: रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मेरे।
1: कस्बा रघुपुरा ग्रेटर नोएडा कोमल प्रसाद शर्मा उत्कर्ष कौशिक योगेश जैन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन परिवार से है मेधा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित केशु रिधन खुराना खुर्जा उत्तर प्रदेश से अरोड़ा परिवार तिलक राज प्रकाश चंदन अंकुश हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जिला जगदीश धाकड़ नायमा रंजू बाई युवराज सिंह शिवांगी आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया क्योंकि और नाम पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। लता जी का एक प्यारा सा गीत इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को अंजाम पर पहुंचाते हैं। बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ विजय इसके बाद मिलेगा नहीं हालांकि दिल आज के मेहमान आपके साथ सुनेगा। इस गाने की फरमाइश की थी रानी ने दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will later travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President to him over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian president's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. The minister highlighted that Ayushman Bharat scheme has provided cashless health coverage to millions of beneficiaries across the country and has now been extended to senior citizens as well. Mr. Gadkari also noted that Jan Aushadhi Kendras have been made quality medicines available at affordable prices, helping reduce out-of-pocket healthcare expenditure for people. On the occasion of World Blood Donor Day today, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has called upon the people to come forward and voluntarily donate blood to help save lives. In a social media post, Mr. Nadda said that blood donation is one of the simplest yet most effective ways to give someone a second chance at life. The health minister also stressed on the need to spread awareness about the importance of blood donation, dispel common myths associated with it, and encourage greater public participation in this noble cause. President Draupadi Murmu has extended her greetings to the people of the country, particularly the people of Odisha, on the occasion of Harvest Festival Raja. In a social media post, the president described Raja as a welcoming festival of the monsoon season that is celebrated to honor the earth, motherhood and the clouds. She said the festival reflects the deep bond between nature and society and is marked by traditional festivities including pitas, betel leaves and swing games. The government has appointed noted economist Professor Alok N. Sharma as chairman of a high-level technical expert committee on labor statistics. The committee has been constituted to strengthen and periodically review labour market indicators and assess the evolving structure of India's labour market. The committee will focus on generating more timely and internationally comparable labour statistics. In ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. Australia lead Turkey 1-0 at a half-time in their opening FIFA World Cup 2026 match in Vancouver. In other FIFA World Cup action today, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory with a hard-fought 1-0 win over Haiti in their Group C opener at Gillette Stadium in Massachusetts. Elsewhere in the same group, five-time champion Brazil were held to a 1-1 draw by Morocco in New Jersey. Vinicius Junior rescued a point for Brazil with an equaliser in the 32nd minute. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही अलग तरह के मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत सुरीली, बहुत मीठा गाने वाली याशिका सिक्का, बहुत बहुत स्वागत करेंगी याशिका आपका।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।
0: और इस सफर में मेरे साथ है मेरी दोस्त अनीता वर्मा जी। अनीता जी से आप मिल चुके हैं, जब हम रंजीत जी को लेकर आए थे आपके लिए बहुत सारी हमने बातें की थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी।
2: धन्यवाद रश्मि, हमेशा की तरह अच्छी सी मुस्कान के साथ आपने कार्यक्रम शुरू किया और मीठी आवाज में मुझे लोगों तक पहुंचाया। याशिका, आपका भी स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: याशिका एक लड़की जो दिल्ली में रहती थी, जिसकी आंखों में सतरंगी सपने थे, जो चूमना चाहती थी आकाश को, जिसकी आवाज में मिठास थी, जो गाती थी तरंगों के साथ और घूमते घूमते तितलियों की तरह न जाने कब वो पहुंच गई मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा था?
1: बहुत ज्यादा संघर्ष, लेकिन उतना ही सुंदर भी, बिकॉज मुझे लगता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं, बट जब आप उससे बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि दैट इज वेयर यू गेट विंग्स टू फ्लाई। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप इंसान के तौर पे बदल जाते हो, आप एज एन आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बदल जाते हो, बिकॉज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, टू रीच जहां पे आपको पहुंचना है, उसमें बहुत तराशना पड़ता है अपने आप को। वो जितना डिफिकल्ट होता है, वो उसकी अपनी एक बहुत अलग तरीके की ब्यूटी भी होती है। तो वेरी वेरी होलसम रोलर कोस्टर राइड, जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में, बट वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई कुड टेक दिस स्टेप। आसान नहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो हमेशा से मिला। तो यस, ऑल इन ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल, कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल।
2: पहला ब्रेक कब मिला, कैसे मिला?
1: पहला ब्रेक एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही रैंडमली मिला। 2013 जुलाई में मैं बॉम्बे गई और उसके जाने के कुछ एक साल बाद ही मैं ऐसी एक वहां पे ऑडियो गैराज करके एक स्टूडियो है, वहां पे हैज टू गो एवरी डे क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आते थे। तो कुछ कॉन्टेक्ट बना के वहां पहुंची एंड एक दिन ऊपर बस हम लोग चाय पी रहे थे और नीचे दो एग्नेल और फैजान करके दो कंपोजर्स हैं।
2: अच्छा।
1: उन्होंने ऐसे बोला कि हम एक गाना ट्राई कर रहे हैं फिल्म का, आप गाओगे क्या? आई सेड व्हाई नॉट, माइक के आगे खड़ा कर दो, दैट्स वेयर आई एम द हैप्पीएस्ट। एंड दैट वॉज इट। जावेद अली जो बहुत फेमस सिंगर है, उनके साथ जिगरिया फिल्म में इश्क है नाम से गाना था, उसमें एक छोटा सा पार्ट, मेरी दो तीन लाइंस थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाला है, मैंने बस गा दिया और फिर मैं भूल गई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर होता है, आपको बताते हैं नहीं बताते हैं, दे वुड कॉल यू। कुछ नहीं, मैंने गा दिया और फिर ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मैं अपनी म्यूजिक क्लास में बैठी थी, वहां पे जो एक और फेलो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे आके बोला कि अरे तुमने जावेद अली के साथ गाना गाया। मैंने बोला अरे कौन सा गाना, मुझे याद नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट स्मॉल बिग ब्रेक।
0: जब आपको पता चला कि ये गाना अब इतनी बड़ी स्क्रीन पर आ चुका है, फिल्म में आ चुका है और एक हीरोइन पे मुझे लगता है वो गाना फिल्माया गया था, उस समय जो मन में जो भाव उठे वो क्या थे?
1: बहुत एक्साइटमेंट, सबसे पहले तो बिलीव नहीं हुआ ना कि आप जो करने आए थे वो आपको एक साल में कैसे मिल गया। दो तीन लाइन्स थी, बहुत बड़ी फिल्म भी नहीं थी, बट जावेद अली के साथ अपना नाम जुड़ना वही बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे कभी कभी ये भी सोच के लगता है कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू सिंग फॉर मूवीज। हम म्यूजिक क्लास जाते थे, पापा मुझे म्यूजिक क्लास भेजते रहते थे, रियलिटी शो के ऑडिशन होते थे, सब होता रहता था। वो सपना कब बना आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम।
2: अच्छा।
1: तो वो जब हो गया तो मुझे लगा अरे यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है।
2: तो आपने कहाँ से म्यूजिक सीखना शुरू किया, शुरुआत कहाँ से हुई?
1: समर वेकेशन में सब बच्चे कुछ ना कुछ क्लासेस करते हैं, सो माई फादर वॉज हेलबेंट कि म्यूजिक क्लास जाना ही जाना है, कुछ तो करके उन्होंने एक टीचर को ढूंढ लिया। तो मेरी जहां मैं रोहिणी में रहती हूँ उस बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने उनके म्यूजिक टीचर को बुलाया स्कूल के, जिनका नाम था अश्विनी सूदन जी। वहां से हमने क्लासेस शुरू की एंड वो

0: स्टार्ट तो हुई 4-5 बच्चों के साथ क्योंकि सब वेकेशन थे, बट 2 महीने के बाद छुट्टियां जब खत्म हुई गर्मियों की तो बाकी सबने छोड़ दिया, बट मैंने
1: जारी रखा
0: और वो फिर चला 9-10 साल
1: तक चला।
2: अनीता जी, मुझे लगता है कि अगर हम चमकीला फिल्म की बात ना करें इस समय इस मुकाम पर,
1: बिल्कुल
2: तो, हाँ। जिसकी चमक जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं इसका,
1: हाँ,
2: और वो गाना सुनने के लिए ना मैं तो इतनी बेचैन हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले वो गीत सुनूं इनकी आवाज
1: जी
2: और सुनवाऊं अपने सुनने वालों।
1: बिल्कुल, तो यशिका हमारे सुनने वाले आपसे वो गीत सुनना चाहेंगे।
0: तू

0: कोई जाने या ना जाने, लेकिन हम जानते हैं कि याशी का सिक्का जो है वो टैलेंट का एक खजाना है।
1: खजाना है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी, मैंने द लेजेंड एआर रहमान का एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में एआर रहमान आपके बारे में बात कर रही थी और मुझे सुन के और आपको बता करके, अपने श्रोताओं को बता करके गूज बम्स आ रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले मैंने ये गाना श्रेया घोषाल को दिया और श्रेया घोषाल ने किसी कारण से उसके लिए वो नहीं आ पाई, मना किया, और उसके बाद कहने लगे कि मैंने पंजाब से कुछ सिंगर्स बुलवाए थे और उनको कहा कि आप ऑडिशन दीजिए। उन्होंने ऑडिशन दिया, इन बिटवीन यशिका सिक्का से भी मेरी बात हुई, मैंने उनकी आवाज को सुना और उनकी आवाज में एक फ्रेशनेस थी, उनकी आवाज में एक अलग तरह की खनक थी, चमक थी और मुझे लगा कि यस शी इज द पर्सन, यही वो लड़की है जो इस गाने को गा सकती है। तो एक लेजेंड एआर रहमान का एक नई लड़की के लिए ये कहना कितना मायने रखता है और आपको कैसा लगा ये सुन के?
2: बहुत बहुत बहुत बहुत मायने रखता है, बिकॉज हम सबको पता है श्रेया घोषाल जी खुद एक लेजेंड है, उनको छूना बहुत मुश्किल है, उनको छोड़कर किसी एक नई लड़की पे ट्रस्ट करना

0: तभी थोड़ा मुझे और प्रैक्टिस करने दो. उन्होंने बोला नहीं नहीं यू विल बी एबल टू डू इट. एंड इट वॉज इट रात के कुछ ढाई तीन बज रहे थे.
1: तो कितना समय लगा रिकॉर्डिंग में?
0: सो द फर्स्ट इस गाने के बहुत सारे इटरेशन्स हुए, क्योंकि जब शुरू में पहली बार जब गाना बना तो सिर्फ मुखड़ा था सर के पास, और लिरिकली भी सिर्फ पहली लाइन थी, तू क्या जाने मेरे यार है. तो उसके बाद सिर्फ धुन थी उनके पास, तो हमने सिर्फ वो मुखड़ा रिकॉर्ड किया, कुछ अराउंड आधे पौने घंटा वो सब किया. उसके बाद फिर इरशाद कामिल जी ने लिखा. उसके बाद भी लिरिक्स में बहुत चेंजेस हुए. रहमान सर परफेक्शनिस्ट हैं फॉर अ रीजन, इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन. तो वो गानों में छोटी छोटी मुर्कियां ऐड करते ही रहते थे. हमने ये गाना 6 महीने तक गाया ऑन एंड ऑफ. ऑफकोर्स नॉट एवरी डे, बिकॉज वो इतनी सारी फिल्में करते हैं, और चमकीला के बहुत सारे गाने थे जिनको मैंने ट्राई किया, तो बहुत काम चल रहा था. बट तू क्या जाने के कम से कम 4 या 5 वर्जन हम लोग ने ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स गाए.
1: तो कोई चीज निखर के तभी आती है जब उस पर लगातार प्रयास होता है. अगर हम 5 मिनट या 7 मिनट का जो गीत सुनते हैं उसके पीछे कितनी लंबी तैयारी होती है. खुद जो कलाकार होता है वो स्टूडियो जब जाता है और जब एक फाइनल प्रोडक्ट निखर कर आता है तो कुछ ऐसा गीत बनता है तू क्या जाने मेरे यार. याशिका, एक स्ट्रगलर जब मुंबई में पहुंचता है तो क्या होती है उसकी स्ट्रगल की कहानी और कितना उसको भटकना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय संगीत सीख रहे हैं, वो चाहते हैं आपकी तरह कुछ बने और छा जाए, म्यूजिक में कुछ कर जाए. उनको थोड़ी सी अपनी झलक दो उस समय की कि किस तरह से आपने संघर्ष किया है.
0: मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूं तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं म्यूजिक को प्रोफेशनली यू नो आई एड एवर टेक इट अप. इट वाज ओनली बिकॉज माय फादर थॉट हैड ह्यूज बिलीफ इन मी. तो करते करते करते करते बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद कि मैं पढ़ाई करनी है या म्यूजिक करना है, करने के बाद बॉम्बे पहुंच तो गई, बट वहां पर किसी को जानती नहीं थी. और क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सिंगर बनूंगी प्रोफेशनली कभी करूंगी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल बोलेंगे या टफ थिंग टू डू वॉज अपने आप पे बिलीव करना कि ये कर सकती हूँ. यहां पर अगर आई हूं, किसी वजह से आई हूं, अभी तक अगर ये इतने सालों से चल रहा है उसके कोई मायने हैं. आई माइट बी वेरी रॉ, मैं शायद उतनी परिपक्व नहीं हूं, लेकिन एक फाउंडेशन है जिसपे हम ऊपर एक यू नो बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं. तो मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था टू बिलीव इन माई सेल्फ. और आप जब बॉम्बे जाते हो किसी को जानते नहीं हो, इट्स नॉट अ सैलरी जॉब, आप फ्रीलांसर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप महीने में थोड़ा भी काम करोगे तो आपको पैसा मिल ही जाएगा. एवरी डे यू हैव टू डिग अप अ न्यू वेल. दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्ट्रगल सो टू से. आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रगल क्योंकि मुझे लगता है अपने काम के लिए इसको मेहनत ज्यादा बोल सकते हैं. स्ट्रगल शायद नहीं बोले अब तो बेटर है क्योंकि इतना तो हम अपने काम के लिए कर सकते हैं.
2: जाहिर बात है कि जब आप मुंबई गई तो ये सोचकर ही गई थी कि मुझे सिंगर बनना है.
0: हाँ,
2: है ना. और फिर वहां पर कैसे स्टूडियो में पहुंचती है, किस तरह से लोगों से कॉन्टेक्ट करती है, तरीका क्या रहता है, और फिर कैसे हर कदम पे उसके सामने मुश्किलें आती हैं, थोड़ा सा ये बताएं.
0: एक मुश्किल ये थी कि मैं जब गई थी तो मैं कुछ 22 साल की थी, और मैं जिस भी स्टूडियो में जाती थी देवर ऑल मैन अराउंड, उनमें से कोई भी 40 की उम्र से कम नहीं था. तो मेरे लिए एक स्ट्रगल ये भी था यू नो हाउ टू टॉक टू देम. इट्स सो अमेजिंग टूडे दैट हमारे स्टूडियो में 3 औरतें. इट इज सो ब्यूटिफुल अ फीलिंग आई कांट टेल यू. वरना जिस भी स्टूडियो में जाते थे सिर्फ आदमी होते थे. उस टाइम नहीं समझ आता था, बट जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो वो एक चीज होती थी, एक डिस्कम्फर्ट होता था. आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, कोविड में पढ़ो, दैट डजेंट मैटर, देयर इज अ वे. एक वो चीज थी. और दिल्ली से मैं जब गई थी मेरे पास 0 कॉन्टेक्ट थे, तो मैं वहां पे जाके ऑर्केस्ट्रा के शोज करती थी और वो मुझे नहीं करने थे क्योंकि आई वॉज अ मिसफिट देयर बिकॉज ऑफ माई वोकल रेंज. आई वॉज अ मिसफिट देयर, तो मुझे वो नहीं करना था. तो पहले मैंने पैसे कमाने के लिए किया, कुछ वॉइस ओवर्स की जॉब भी की, मैंने वॉइस ओवर्स करना सीखा. मैं आज भी वॉइस ओवर्स करती हूँ एड्स के लिए.
1: अच्छा.
0: तो वो सब करना सीखा सो दैट आई कैन यू नो जस्ट गेट बाय और पैसे मिलते रहे. फिर मैंने वो ऑर्केस्ट्रा के शोज किए, और फिर एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि अगर मैं ऑर्केस्ट्रा के शोज करती रहूंगी तो मैं आर्टिस्टिकली कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगी. मैं वही गाने गाऊंगी जो पहले गाने लोग गाते थे. मेरी खुद की आवाज क्या है, अगर मुझे कोई एक फ्रेश सेट ऑफ लिरिक्स और मेलेडी मिलता है उसको मैं इंटरप्रेट कैसे करती हूँ. मुझे लगता है हर गाना एक तरीके से सुनाई देता है ओनली बिकॉज लिरिक्स और मेलेडी तो सबके पास होते हैं. सिंगर टेबल पे क्या लाता है वो उसका कैरेक्टर है, दैट शाइन्स थ्रू द सॉन्ग. तभी नहीं तो सुनिधि जी का गाना श्रेया जी से अलग क्यों लगता है, वो उनका इंटरप्रिटेशन है, उनकी सिर्फ आवाज
2: नहीं है. अपनी आवाज की पहचान अलग होती है.
0: करेक्ट.
1: आपने अभी बात की थी याशिका महिलाओं की, भारत सरकार का तो ये हमेशा से एक प्रयास रहा है कि जेंडर इक्वालिटी वाली की जब हम बात करते हैं तो आकाशवाणी में बहुत सारी महिलाएं अपना टैलेंट इस समय इस्तेमाल कर रही हैं। अनीता जी इस समय मौजूद हैं और जो हमें रिकॉर्ड कर रही हैं स्टूडियो के उस पार, महिलाएं ही रिकॉर्ड कर रही हैं हमारे रिकॉर्डर्स। जब महिलाओं की बात हुई तो एक और फिल्म याद आ रही है मुझे, पैडमैन।
0: पैडमैन
1: और

0: यशिका, जैसे आप वहां अभी भी लोगों से जुड़ रही हैं, एक हिट के बाद अभी आगे बहुत कुछ करने को है, तो उसके लिए आपने कुछ खास प्लानिंग की या कुछ सोचा है या उसको किस्मत के सहारे छोड़ दिया?
1: बहुत कुछ किया, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं वोकल क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। आई एम वर्किंग ऑन माय हेल्थ, आई एम वर्किंग ऑन द फूड आई ईट, आई एम वर्किंग ऑन माय स्लीप रेजीम, सो दैट अभी शो स्टार्ट होंगे तो एक्टिविटी लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वो और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक गाना आ गया तो अब अपने आप 50 गाने आएंगे, वी आर नॉट इन दैट फेज एनी मोर। बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, इसीलिए मैंने बोला कि स्ट्रगल का जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गया।
0: रियाज कितनी देर करती है?
1: 2 से 3 घंटे तो वॉइस का प्रैक्टिस, उसके बाद गाने सुनना, उनको कॉपी करके उनसे सीखना, वो सब चलता रहता है।
2: याशिका, आपने कहा कि जो मेहनत है उसका तरीका बदल गया, क्योंकि जो संगीत की इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री खुद बहुत बदल चुकी है। पहले समय में होता था कि 4-5 जो मुख्य धारा के जो गाने वाले थे, लता जी, किशोर और अभिजीत, बाद में फिर श्रेया जी, ये सब लोग आ गए, तो वो मुख्य धारा के बॉलीवुड सिंगर्स जिसे हम कहते हैं कि
0: मेनस्ट्रीम के जो
2: वो थे। लेकिन ये समय ऐसा समय है कि इतने सारे गाने वाले हैं, चाहे हम फीमेल प्लेबैक की बात करें या मेल प्लेबैक की बात करें, और म्यूजिक इंडस्ट्री खुद बहुत बदल रही है। एक ही फिल्म ऐसी आती है कि जिसमें कि हर गाना अलग अलग आर्टिस्ट ने गाया है, है ना, तो वो जो सीन है उसमें आप किस प्रकार से अब देख रही हैं, अपनी ग्रोथ देख रही हैं?
1: जैसे कि मैंने बोला कि अब क्योंकि चीजें पहली जैसी नहीं है, तो क्या जाने के बाद भी मैं अभी भी कंपोजर्स को टेक्स्ट करती हूँ कि मुझे आपके साथ काम करना है। अब थैंकफुली ऐसा है कि मैं जिनको मैसेज करती हूँ उन्होंने तो क्या जाने सुना होता है, तो वो एक मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है। बट आई स्टिल टेक्स्ट देम दैट आई वांट टू वर्क विथ यू। मैंने शंकर जी को मैसेज किया, जैसे ही तो क्या जाने रिलीज हुआ मैंने साउथ के सारे कंपोजर्स को मैसेज किया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जमाना है अभी, सब बहुत लोग फिल्म म्यूजिक से बाहर निकल के अपने खुद का म्यूजिक निकालते हैं। एवरी सिंगल डे आई एम फाइंडिंग

0: मेरा नेक्स्ट कोलैबोरेटर कौन होने वाला है एंड आई एम वर्किंग ऑन सो मेनी सॉन्ग्स आई एम वेरी एक्साइटेड सो
1: तो अभी भी गाने इसी प्रकार से बन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में
0: बिल्कुल बिल्कुल लेबल्स आपको कुछ कुछ लेबल्स जैसे टी सीरीज है जी म्यूजिक है वो कुछ कुछ सिंगर्स को साइन करता है एंड देन फिर लेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको प्लेबैक दिलाया जाए वो एक चीज होती है बट प्री रिकॉर्डेड तो नहीं होता है कुछ भी
1: नहीं
0: पहले जब फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर के पास आते थे तो उनके पास सिचुएशन आती थी उन लेरे से साथ में बैठते थे हम लोग उसको जैमिंग बोलते हैं साथ में जैसे बोलते हैं ना बैठक होती थी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी अभी ये होता है एक चीज की जितने भी म्यूजिक कंपोजर है उनके पास अपना एक बैंक होता है मेलोडीज का तो जब कोई फिल्म डायरेक्टर उनके पास आता है उनको बोलता है कि ये सीन है तो अपने बैंक में से देखते हैं इफ एनीथिंग फिट्स इन अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स दे मेक अ फ्रेश सॉन्ग क्योंकि इतने टाइम तक जब आपको फिल्म नहीं मिलेगी तो आप खाली तो बैठेंगे नहीं वो आर्टिस्ट है तो वो गाने बना के रखते हैं वो प्रैक्टिस भी होती है वट एवर यू कैन कॉल
1: जी और जो रचनात्मकता है उसके लिए तो समय की जरूरत है ना
2: बिल्कुल
1: कि अभी आपको जरूरत पड़ी तो एकदम गाना निकालना बनाना वो थोड़ा समय तो मांगता ही है होमवर्क मांगता है
0: और लोगों के पास अभी टाइम नहीं है जैसे सिंगर्स के साथ भी मैं बहुत बहुत बहुत खुशनसीब हूं कि 6 महीने तक ऑन एंड ऑफ हमने तो क्या जाने गाया ऑल्दो जब मैं जब भी जाके गाती थी मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज में फाइनल होने वाला है नहीं बट उस टाइम तक वो उतना टाइम मिला गाने को थोड़ा घर पे बैठ के ही चाहे नॉट विद रहमान सर बट जीने का टाइम मिला जब लता जी आशा जी गाती थी उन लोगों के एक एक गाने के 10-10 महीने 11-11 महीने रोज बैठ के म्यूजिक कम्पोजर के साथ रिहर्सल होते थे बट अब वो नहीं होता है
2: पुराना गीत जो आपको पसंद हो हमारे कार्यक्रम का नाम ही गोल्ड है
1: ये चैनल गोल्ड है जो कि ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक के लिए जाना जाता है तो लता मंगेशकर जी की बात हुई है तो क्यों ना हम आपकी पसंद का कोई गीत सुन लें लता जी की आवाज में
0: एक लता जी का गाना है जो मैं बचपन से हमेशा गाती थी और मेरे पापा मुझे कोई भी घर पे आता था तो वही गाना गाने को बोलते थे मैं 2 लाइनें उसकी आपको सुनाती हूँ

0: यशिका, एक बात मेरे मन में आ रही थी कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें श्रेया घोषाल आपको मंच पे बुला रही है।
1: यशिका, जो फिल्म थी मनमर्जियां, इसमें भी आपका गीत था, उसके बारे में कुछ बताइए।
2: मनमर्जियां मेरा दूसरा गाना था अमित त्रिवेदी जी के साथ। अमित त्रिवेदी जी को मैं 5 साल से मैसेजेस कर रही थी, उनको और उनके मैनेजर को, और वो मैसेज कभी देखा नहीं जाता था। बट रैंडमली अगेन फेसबुक केम टू माई रेस्क्यू। मेरी सारी नेटवर्किंग उस टाइम पे फेसबुक से ही होती थी, तो मैंने उनके मैनेजर को 1 लास्ट टाइम ट्राई किया और उन्होंने मेरे से रिप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला कि अरे तुम अपने सैम्पल्स भेज दो, और 2 दिन बाद मुझे रिकॉर्डिंग का कॉल आया। तब हमने पैडमैन का सयानी गाया और उसके 2 महीने बाद कुंडली के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अमित त्रिवेदी इज रियली सपोर्टिव एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं। बहुत पेशेंटली आपको टाइम देते हैं गाना सीखने के लिए। वेरी वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
0: अच्छा, एक बात और है, जैसे एक प्रोसेस रहता है घर से स्टूडियो पहुंचने का, स्टूडियो में जाके गाने का, जैसे हम आज यहाँ इस स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं, तो स्टूडियो में गाते वक्त या किसी रिकॉर्डिंग में आपको कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, एक ऐसा अनुभव जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगी?
2: मुझे लगता है रहमान सर के साथ तू क्या जाने में ऐसा हुआ, और सयानी जब हमने पैडमैन के लिए गाया था, बिकॉज उसमें एक अलग तरीके की आवाज थी। आप जैसे अभी सब सुन रहे हैं, मैं बहुत सॉफ्टली गाती हूँ और ये सब, बट उस गाने की नीड थी कि हम बेबाक औरतें होती है ना, उनके जैसा कैरेक्टर उनको चाहिए था। तो मुझे खुलने में थोड़ा टाइम लगा, तो हम टेक कर रहे थे एंड अमित त्रिवेदी वॉज लाइक वो बात नहीं आ रही है मुझे, आई वॉन्ट कि तुम और ज्यादा खुल जाओ। तो मैंने थोड़ा डर भी गई, मैं बोला 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो वो जब 2 मिनट का ब्रेक लिया, तो मैं माइक पे से रिहर्स कर रही थी, और तब अनकॉन्शियसली अननोइंगली मैं बहुत खुल के गा रही थी, एंड देन ही स्टॉप मी एंड ही वाज लाइक आई एम रिकॉर्डिंग यू राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई वांट। वो बहुत एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था। ही वाज लाइक अरे इतना पावरफुल गा सकती हो, गा क्यों नहीं रही हो? मैंने बोला ओके
0: नाउ। यशिका, एक बात बताएं, अभी आप खुल के बोलियो।
1: बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा है, मीठे मीठे गीत सुनने को मिल रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप कोई पुराना गाना जो आपकी पसंद का हो वो गुनगुनाएं, हम अपने सुनने वालों को वो सुनाएं, और फिर आगे बातें जारी रखें।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: जीवन आफैमा एउटा कथा हो। कहिले कहीँ हामी आफैलाई शब्दहरूमा उतार्न सक्दैनौं, तर संगीतले ती नभनिएका कुराहरूलाई पनि अभिव्यक्त गरिदिन्छ। आजको हाम्रो सांगीतिक यात्रामा एउटा यस्तो आवाज जसले प्रत्येक शब्दमा एक प्रकारको गहिराई छ, सुन्दै सुन्नेछौ डेजी बराइलीको स्वरमा एउटा खुला किताब हो म। आउनु सुनौ यस गीतलाई।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता, एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद, हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ, होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है, ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो, दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हां, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिजाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे खरीदते हैं तो इसकी डिजाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिजाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिजाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में जरूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें जरूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहां कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको दे

है जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आजादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूं तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो है वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया यह गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की वे उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना, मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिसे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक जमाना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहां आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहां टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे, जी हाँ बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियां, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड। मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की

0: कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर

0: लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंगा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता समय यस बेला दिउँसोको 2:30 भइरहेको छ र हामी पुनः उपस्थित भएका छौं नेपाली लोकगीत लिएर। पहिलो गीत लिएर आएका छौं कलाकार कुमार बस्नेतको स्वरमा।

0: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। अब समाचार सन्ध्या शर्माबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल मेक्रोनसँगै नाइसमा इण्डिया इनोभेट्सको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगत 12 वर्षमा देशमा स्वास्थ्य सेवाहरूलाई राम्रो र सस्तो बनाउनका लागि धेरै कदमहरू चालिएको बताउनु भएको छ। श्रीलंकाको कोलम्बोमा आज 5,000 भन्दा बढ़ी नर्तक तथा नर्तकीहरूले भारतनाट्यमको सामूहिक प्रस्तुति दिएर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। मौसम विभागले आगामी 2-3 दिनमा कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा र दक्षिण छत्तीसगढ़मा दक्षिण पश्चिम मनसून अगाडि बढ़नको लागि अनुकूल अवस्थाको पूर्वानुमान गरेको छ र आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकपमा आज भारत र पाकिस्तान बीच भिडन्त हुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल मेक्रोनसँगै नाइसमा इण्डिया इनोभेट्सको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। भारत फ्रान्स नवप्रवर्तन वर्षको तत्वावधानमा आयोजित यस कार्यक्रमले 120 भन्दा बढ़ी भारतीय स्टार्टअपहरू, विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरू, प्रविधि नेताहरू र उद्यमीहरूलाई एकसाथ ल्याउनेछ। यसले भारतको द्रुत गतिमा बढ़दो नवप्रवर्तन पारिस्थितिक प्रणाली प्रदर्शन गर्नेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति मैक्रोनले भारत फ्रान्स विशेष विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीको प्रगतिको समीक्षा गर्न र प्रमुख क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल गर्न द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। सुन्नुहोस् हाम्रो संवाददाताबाट एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: व्हाइट हाउसले भनेको छ कि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को सप्ताह फ्रान्समा हुने

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक

0: आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi interacted with leading investors, venture capitalists and innovators participating in the landmark India-France Innovation Showcase. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys founder Narayana Murthy and several prominent business leaders were present on the occasion. The event features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, quantum technologies, space technology, clean energy and biotechnology. Prime Minister Modi and President Macron are scheduled to jointly inaugurate Bharat Innovates shortly. The event is being held as part of the India-France Year of Innovation and is aimed at strengthening collaboration in technology, research, entrepreneurship and investment between the two countries. Traditional Slovak hospitality will be accorded to Prime Minister Narendra Modi in Bratislava this evening. Prime Minister Narendra Modi will be given a traditional welcome with bread and salt upon his arrival in Bratislava. According to Slovak culture, guests and dignitaries are greeted with a loaf of bread and a small dish of salt. Bread represents prosperity, while salt symbolizes value, friendship and protection. A renowned children's folk group from the Miava region of Slovakia will perform a traditional Slovak dance to welcome the Prime Minister. A performance of Vande Mataram by the Lusnica Ensemble will be another highlight of the arrival ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. Union Minister of Minority Affairs Kiran Rijiju has said that the life, quality and overall situation of the minority communities in the country have improved significantly over the past 12 years. In an interview with the National Daily, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas has ensured that the benefits of development reach every section of the society.
3: Minorities are better in India. 12 years after Modi ji has become the Prime Minister, the life, the quality, the overall situation of minority communities have become better because life of every Indian has become better.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश। कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुंचाना चाहिए।
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूं वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहां नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली।

0: अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने
1: इन्हें रीडर जो आपका होगा
0: रीडर जो होगा या अगर कोई सिंगर हो कोई सुनने वाला हो अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने वाला हो तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स हैं उनमें यही है क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले और मिलते भी नहीं अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें दुनिया के सबसे अजीम मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है सब उसका नाम जानते हैं कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम
1: विलियम शेक्सपियर को उनके नाम को नहीं जानते
0: उसके काम को कौन पढ़ा है बहुत सारे लोग उसके इतने दर्जनों ड्रामास हैं उनको किसने पढ़ा है किसी एक ने एक प्ले पढ़ा किसी ने एक चैप्टर पढ़ा किसी ने एक का सीन पढ़ा कुछ डायलॉग्स याद किए इतना ही मिल गया उसको और शेक्सपियर को खुद क्या मिला कुछ भी नहीं वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को क्रिएटर को वो बड़ा इनाम है
1: प्रोफेसर साहब बीइंग एन ऑथर एंड राइटर आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर आपको फीलिंग है आज की तारीख में
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं किसी जगह रहता हूं सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूं फिर अपने मुल्क में रहता हूं अपने रियासत में रहता हूं और इस दुनिया में रहता हूं
1: जी
0: 21वीं सदी में रहता हूं मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता मेरी एग्जिस्टेंस जो है मेरा वजूद जो है इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं लेकिन एज राइटर सेंसिटिव राइटर वो आंसरेबल है चाहे वो अमेरिका में हो कहीं भी हो उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है वही रिश्ता उस रिश्ते के बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा अपने एग्नीज और अपने पेन के बारे में लिखा वो मेरा इंडिविजुअल पेन मेरी इंडिविजुअल एग्नी नहीं बल्कि पूरे

0: academics. How the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
1: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
0: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नबीहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे कार्यक्रम रेडियो किड्स में। और मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: आयत
2: इसराज।
3: आज हम
4: सौर्य।
0: जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप सबने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा?
1: मैंने राग बिलावल, राग भोपाली और राग भैरव बजाना सीखा और गाना सीखा।
0: अरे इसराज, तुमने तो गर्मियों की छुट्टियों में काफी गाने सीख लिए, एक बजाकर तो सुनाओ।
1: ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तो अब मैं आपको वृंदावनी सारंग की बंदिश सुनाता हूँ।

0: अरहम और शौर्य, आप लोग इतने चुप क्यों हो? आप भी कुछ बोलो।
1: इस बार गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में सिर्फ खेलना और टीवी ही नहीं देखना है, बल्कि कुछ नया भी सीखना है। मेरी दादी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन्हीं की मदद से मैंने भी अपने घर के आंगन में कुछ नए पौधे लगाए हैं। मैं रोज उन्हें पानी देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। जब उन पौधों में नई पत्तियाँ निकली तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादी कहती हैं कि इससे मैंने प्रकृति से प्रेम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सीखा है।
0: शौर्य, आपने क्या सीखा?
2: मैंने जीव दया, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और काफी कुछ सीखा है।
0: चलो अब मैं बताती हूँ मैंने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियाँ बस अब खत्म होने को ही हैं। 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, मगर इस बार की छुट्टियाँ मेरे लिए बहुत खास रहीं, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे स्पेशल है स्कूटी ड्राइव करना। साइकिल चलाना तो मैंने पिछले साल ही सीख लिया था। इन छुट्टियों में मैंने पापा से स्कूटी चलाना सीखा। इस कोशिश में मैं कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चोट लगने से पहले ही संभाल लिया। काफी मेहनत के बावजूद मैं अभी तक अच्छी तरह स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं दोबारा कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। नबीहा, आपने क्या सीखा?
3: इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैंने बहुत कुछ नया सीखा। मैंने ड्राइंग और कलरिंग की कोशिश की और अपने तरीके से सुंदर चित्र बनाए। मैंने डांस सीखना शुरू किया और रोज रोज प्रैक्टिस करके थोड़ा बेहतर भी हो गया। घर में मैंने मम्मी की मदद करना भी सीखा, जैसे छोटे मोटे काम करना और चीजें संभाल कर रखना। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और खूब मस्ती भी करती थी। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन बीच बीच में मन खेलने का ही हो जाता था। तो कुल मिलाकर मेरी छुट्टियाँ तो अभी सीखने, मस्ती और थोड़ी शरारत से भरी हुई हैं।
0: अरे वाह, आपकी छुट्टियाँ तो बड़ी मजेदार लग रही हैं।
1: मैं एक कविता सुनाऊं?
0: हाँ जरूर।
1: गर्मी की छुट्टियाँ आई, ढेरों खुशियाँ साथ मिलाई, बस्ता बोला अब आराम, हम बोले वाह श्रीमान। आम चूसे कुल्फी खाएं, ठंडी ठंडी लस्सी पाएं, सुबह खेले शाम को गाएं, मिलकर खूब धमाल मचाएं, दाली चुटकुले कहानियां सुनाएं, हंस हंस लोट पोट हो जाएं, नानी के घर जाना प्यारा लगता जैसे स्वर्ग हमारा, पार्क में खेले दौड़ लगाएं, छुट्टियों में मजे उड़ाएं, मस्ती भी हो सीख भी आए, हर दिन नई खुशी दे जाए, गर्मी की छुट्टियां हैं न्यारी, लगती सबसे प्यारी प्यारी।
4: अरे वाह,

0: इसराज, आपने तो गाना सीखा है ना, आप हमें सुनाओगे?
1: जी जरूर।

0: अरे वाह, आपने तो कितना अच्छा गाना सुनाया।
1: धन्यवाद।
2: मैं अपनी एक चिड़िया की गीत वाली कविता सुनाऊं?
1: सुनाओ।
2: सबसे

0: ही है संसार, आखिरकार मैं बड़ी हुई दूर दूर तक उड़ी पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। कैसी लगी?
1: वाह,
2: बहुत अच्छी,
3: बहुत अच्छी।
1: क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है?
3: हाँ, रक्तदान दिवस।
0: हाँ, वो 14 जून को ही होता है।
1: हाँ,
0: आज तो वही तारीख है।
1: हाँ, आज तो 14 जून ही है। कोई उस पे कुछ बताना चाहेगा?
4: हाँ, मैं बताऊँ?
1: बताओ।
4: जैसा कि आप सभी ने बताया, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। 14 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
1: अरहम, क्या आप बताना चाहोगे रक्तदान के बारे में कुछ?
0: एक दिन राहुल अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया। वहाँ उसने देखा कि एक मरीज को तुरंत रक्त की जरूरत थी। मरीज के परिवार वाले बहुत चिंतित थे। तभी कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया और मरीज का इलाज शुरू हो गया। ये देखकर राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, रक्तदान एक महान कार्य है। एक व्यक्ति का रक्त कई लोगों के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। उस दिन राहुल ने समझा कि रक्तदान केवल एक दान नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उसने फैसला किया कि बड़ा होकर वो भी रक्तदान करेगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रक्तदान महादान है। ये किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
1: अरे वाह,

0: तुम तो काफी कुछ बता दिया हमें। चलो मेरे पास एक कविता है रक्तदान पर, क्या मैं सुनाऊं?
1: हाँ जरूर।
0: रक्तदान है सबसे न्यारा, इससे बचता जीवन प्यारा। जीवन पर जब संकट आता, रक्तदान ही काम में आता। एक दान अनेक मुस्कान, यही है रक्तदान की पहचान। नहीं खरीद सकते हम प्राण, पर दे सकते जीवन दान। मानवता का यही संदेश, मदद करें हम ये विशेष। आओ मिल कर ले ये ठान, करेंगे हम भी रक्तदान। जब हो जाए किसी भी योग्य, जरूर निभाएं ये कर्तव्य। रक्तदान का करे सम्मान, सच में है ये महादान।
2: इस दिन रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। रक्तदान से दुर्घटना पीड़ितों, मरीजों और जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के लिए नियमित रक्तदान आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं।
3: अच्छा इसराज, तुमने तो हमें बताया था कि तुमने गाना भी सीखा है, जरा एक गाना तो सुनाओ।
2: जी जरूर। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो।

0: हमें तो पता ही नहीं था।
1: अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं। क्या मैं पूछूं?
0: जी जरूर।
1: अच्छा, अभी जब मैं रेडियो आ रही थी तब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स लगी थी और उन्हें देखते ही सभी लोग रुक गए। तो मुझे बता सकता है कि ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं?
2: ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, लाल, पीली और हरी।
1: अरे वाह हम। अच्छा, तो जो रेड लाइट होती है उसका क्या मतलब होता है?
2: लाल बत्ती का अर्थ है रुकना।
1: और ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है?
3: हरी बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ना।
4: अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ट्रैफिक लाइट्स के ये 3 रंग सिर्फ भारत में लागू हैं या किसी और देश में भी इनका चलन है?
2: ट्रैफिक लाइट्स की ये तीनों लाइट यूनिवर्सल है, लेकिन जापान के पास ग्रीन लाइट के जगह नीली लाइट है।
4: हाँ, आपने तो सही बताया। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे?
3: ट्रैफिक लाइट के नियमों का उल्लंघन करने से चालान होता है।
2: ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से एक्सीडेंट हो सकता है। इससे अपनी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।
4: कोई और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जैसे अभी लाल बत्ती पर गाड़ियां रुक गई, पैदल चलने वालों के लिए क्या है?
3: जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई विशेष जगह होती है। यह सफेद और काले धारियों से बनी होती है जो जेब्रा के शरीर जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसका उपयोग सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए किया जाता है।
4: तो अब क्या मुझे बताएगा कोई कि वाहन चालकों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का नियम क्या है?
1: मैं बताऊं?
4: बताओ।
1: वाहन चालकों को जेब्रा क्रॉसिंग पर तेजी से गाड़ी चलाने या ओवरटेक करने से बचना चाहिए।
4: सही बोले।
2: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग कब और कहाँ बनाया गया था, क्या किसी को पता है?
3: हमें तो नहीं पता।
4: मुझे भी नहीं पता।
2: भी नहीं पता।
4: चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर।
2: हाँ बताओ।
4: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग 1951 में यूनाइटेड किंगडम के स्लो में बनाया गया था।
2: हाँ सही कहा।
4: तो क्या किसी को पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियों की चौड़ाई कितनी होती है?
2: 24 इंच।
4: सही जवाब। मैंने देखा है कि स्कूल के बाहर और रोड पर कई जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। क्या मुझे बताएगा कि वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं?
2: हाँ, रोड साइंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशनल।
1: अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वार्निंग साइंस क्या बताते हैं?
4: ये साइंस ड्राइवरों को आने वाले खतरे, सड़क की स्थितियों या अचानक पैदा होने वाली अड़चनों के बारे में सावधान करते हैं, जैसे स्कूल जोन, स्लिपरी रोड, नैरो रोड आदि।
3: क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस साइन का मतलब क्या होता है जिसमें एक आदमी कुल्हाड़ी लेके जमीन को खोद रहा होता है?
1: क्या इसका मतलब ये है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
3: सही जवाब।
4: शौर्य, क्या आप बताना चाहोगे रेगुलेटरी साइंस का क्या मतलब होता है?
2: मुझको नहीं पता।
4: अरे कोई नहीं, क्या आरम आप बताना चाहोगे?
2: ये साइंस प्रतिबंधों को बताते हैं। इनका उल्लंघन ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जा सकता है, जैसे स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो

0: पार्किंग आदि।
1: आपने तो सही जवाब दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की भावना जगाने वाला ये मशहूर शेर है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। अभी 3 दिन पहले ही उनकी जयंती थी। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। 19 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने आजादी की राह पर कदम रखा था। इसी सिलसिले में वो 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी शामिल हुए, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 30 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए बिस्मिल ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।
2: अब मैं एक उनकी मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना गाकर सुनाऊंगा।
1: सुनाओ।

नमस्कार फौजी दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा के अंतर्गत इस खास कड़ी पहचाने कौन में मैं सीमा झा आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारा विशेष कार्यक्रम पहचाने कौन तो है ही, साथ ही आज हिंदी फिल्म जगत के दो ऐसी शख्सियत का जन्मदिन भी है जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जहां एक ओर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने गीतों को अपने सुमधुर संगीत से सजाया, वहीं दूसरी ओर गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी मखमली आवाज से गीतों को एक नई ऊंचाई प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, आज संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती और गायक जुबिन नौटियाल का जन्मदिन है। आकाशवाणी गांतों की ओर से इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज के कार्यक्रम पहचाने कौन के नियम दोहरा देती हूँ। दोस्तों, आज के इस खास कड़ी पहचाने कौन में आपको हिंदी फिल्मी गीत सुनाए जाएंगे और आपसे उस गाने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको अपने नाम और पता के साथ गाने के मध्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर भेजना होगा अपने नाम और पते के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गानों के सिलसिले की। आपको यह गाना सुनना है और बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन है। सवाल पुनः सुन लें, आपको बताना है कि इस गाने के संगीतकार कौन है। अपना जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पते के साथ भेज दें।

मोहित चौहान के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट का गाना। पूछे गए सवाल का सही जवाब है प्रीतम चक्रवर्ती। सबसे पहला जवाब आया है रवि चौधरी समस्तीपुर बिहार से, अतुल झा और सपना झा सिलीगुड़ी से, अशोक प्रसाद, विवेक प्रसाद और रानी प्रसाद तादोंग गांतोक से, नामग्याल नामची से। इसी के साथ स्नेहा तमांग और विमला तमांग ने भी हमें सही जवाब भेजा है राबंगला सिक्किम से। प्रश्न का जवाब भेजने वाले हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम सुनते हैं हमारा दूसरा गाना। आप सभी के लिए सवाल है कि गाना किस फिल्म से लिया गया है। सवाल पुनः सुन लें, आप सभी को बताना है कि यह गाना किस फिल्म का है। अपना जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर नाम और पता सहित भेज दें। व्हाट्सएप नंबर पुनः सुन लें 9434711111

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना शेर शाह फिल्म का गाना। अब देखते हैं कौन कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। पहला जवाब आया है अशोक प्रसाद, विवेक प्रसाद और रानी प्रसाद तादोंग गांतुक से। मुकेश कुमार, श्याम प्रधान और सैमुअल अधिकारी फिफ्थ माइल तादोंग से। रवि चौधरी समस्तीपुर बिहार से। मोमिता दास, शिल्पी दास और परिवार के अन्य सदस्य रानीपुल गांगटुक से। मनोज श्रीवास्तव और परिवार के अन्य सदस्य रायगंज से। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी तो ये जानते ही हैं कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रक्तदान ऐसा ही एक नेक काम है। इसी महत्व को समझाने और रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कई बार दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव या फिर गंभीर बीमारी के दौरान मरीजों को तुरंत खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। दोस्तों, रक्त कोई कारखाना नहीं बनाता, इसे केवल एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है।

स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। इसलिए इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से और नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि थोड़ा सा रक्त किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं यह अगला गाना, जिसे हमने फिल्म मेरी जंग से लिया है। आपके लिए सवाल है कि इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है। सवाल पुनः सुन लें, आपको इस फिल्म के निर्देशक यानी डायरेक्टर का नाम लिख भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पते के साथ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरी जंग का गाना नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। और हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का सही जवाब है सुभाष घई। जिन्होंने सवाल के जवाब भेजे हैं उनके नाम हैं अतुल झा और सपना झा सिलीगुड़ी से, राकेश शर्मा, सरिता शर्मा, शीतल शर्मा और मोनी शर्मा सिंहताम से, ग्यारी गांव गांतोक से निर्जरा छेत्री और उपासना छेत्री। इसी के साथ मनोज श्रीवास्तव और परिवार के अन्य सदस्य रायगंज से भी अपना सही जवाब भेजा है। हमारे प्रश्नों के जवाब भेजने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं यह अगला गीत। आपको यह गाना सुनना है और गायक कलाकार का नाम बताना है। सवाल पुनः सुन लें। इस गाने के गायक कलाकार का नाम आपको लिख भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पते के साथ।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बेहद खूबसूरत गीत पति पत्नी और तवायफ का गाना। पूछे गए सवाल का सही जवाब है सलमा आगा। अब देखते हैं किस किसने सही जवाब भेजा है। सबसे पहला नाम आया है राकेश शर्मा, सरिता शर्मा, शीतल शर्मा और मोनी शर्मा सिंहताम से, ग्यारी गांव गांतोक से निर्जरा छेत्री और उपासना छेत्री, ममता दुबे, जानवी दुबे और सौरभ दुबे पटना बिहार से, मालदा से संजय दास और इनके साथी, इसी के साथ एलटी भुटिया वेस्ट सिक्किम से। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारा अगला गाना। आपको ये गीत सुनना है और बताना है कि इस गाने के गीतकार कौन है। सवाल पुनः सुन लें, आपको बताना है कि इस गाने के गीतकार कौन है। हमें अपना जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर व्हाट्सएप करें अपने नाम और पते के साथ।

सही जवाब है गुलशन बावरा। जिन्होंने सवाल के जवाब भेजे हैं उनके नाम है मालदा से संजय दास और इनके साथी ममता दुबे, जानवी दुबे, सौरभ दुबे पटना बिहार से। एलटी भुटिया जी ने भी अपना जवाब भेजा है मगर अफसोस आपका जवाब गलत है, मगर आपने जवाब भेजा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा कार्यक्रम सुनते रहें और हमारे सवालों का जवाब भेजते रहें। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम अगले रविवार फिर आएंगे नए गानों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सीमा झा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

asewaru simik lungmaren ligap pisang nusichan yaktung thimberen ningsang o parhum ke humbang kiyungba amim khemlaba khemlama o ain ba izaba samal muringla olam hukso gen chibakang sewa to ondungla lungmen din lamdan ta kasigeru anige kandak ingsebung himba yen dhokma medium web nansing netchi thibongang sumsi tepakwa tuksinu simiter hansing thik nansing lisi ang lisi kilo hertz lamba parigera bachige खागन नुसिचान याक्तुंग थिम्बे इन कञ्चनजंगा एफएम रेन नान्चिंग थिक्कांग सुमसि लाम्बांग आबांगि खनिङ मोलाम खेममा आसुक तुमलो आलो आनिगे इंगसेबुंगबा मोक्लेबिसि युन्दोंगबा ङा सिमुक्ते चुरे अंगवा खाले चोगुले आनिगे येन धक्मा सदा हेके काग्न तगि तेंग पिबा इंघंग खेन एगांग सापचेंग नु आमिम खेमला बा खेमला मालुमु सम्मेगेन सामलोहा तारुम्बे अंग ते चुरीगे अंग वाईगे आयन नाजिरी यन्नी थिबोंगंग लीसी जुन लाबारेन हेंचिंग ने छी निबोंगंग तुक्सी तेनेबा येनलेन असिक लेपमिनाका अन्तंग बेरो अल्लकन थिम्बेरेन थिम्बे इसी काक्न तगी तेंगपी बा इंघंग लाम को हेक सिंग पोंगबाले चोगले अल्ल तेंगपी बा इंघंग खेप्सुम कन कान्दक इंगसेबुङ हिमलो अल्ल समल मुरिङला ओलाम तेङ्ग पिबा इङघङ खेप्सुम सुखिम योगफो सुमिहाङ तुतु प्रेम सिंह तामाङ रे सुखिम रेन योगा सामदाङ कुसङ सामुन्दुम मेजोगुबा ओ हाङना तोन्दुआङ वा मिनिस्ट्री अफ आयुष लाम तङजेम केबोङबा अनलाइन योगा लक लामा थिम्बेन सुखिम खामघुरे यरिक लक्केलाबा तेन्द्र नाम बेउ खानितो तेबाले चुगले सुखिमरेन लुम्मो सुखिम युपोरे लुम युपो मा तुमिहाङ नरेन्द्र मोदी आङ नोगेन सुङ कन्समदाङ तोन्दु आङ वा सुमिहाङ रे पातो इसिक सुखिम लाम केरेक्लेन नान्सिङ थिबोङाङ ङा सिया मिहारे येन धकमा थिबोङाङ लि सि येन खारा लक मेरो अंग मेवाये बाओ अनि लक किराबा नु केम्बा येन खराक कन थिम्बे ओ लक केलाबा या मिहा मेवाये बा लचोगले अनि खामघुरे मिङिन थाङसो बेम्बा लकको वये बा ओ हाङना तोन्दो अङ उवा नामजा नामधा गेजिङ थुम्देन हियाङ थाङथो थाङसिङ निसाम हिम्मो मेमा songjum nuhim nisamhim soyong nu khuni chumlung pokhyang waye khen chumlungin tutu sudesh kumar yakthonglen kulam lo o pokhyang waye bhagara khun khen chumlung len nicham sa ren tongbe thokma thobo ba yambak kujok samdang ba tenam wanam ha ren samdang panse ha pharse me jog ang waye namda sukim soring thumren chota samdong pangbe o सुमयन खराकपा पांगभे सनारुंग मांगसेवा मेजोगुआंग वायेनी भागर कन मांगसेवान पांगभे बाकेरेक मेदोंग सिंगांग तायमलेन यानिन सांगलो बनु सनारुंग पोंग लगेर बा खुनि निंगवारे छिंगे नांगना कन मांगसेवान हेक सिंगांग आयन कुनुम येन बा मांगसेवा पोखेंग वाये कन मांगसेवान तोमांग साम्यो लाम्बा आयन लाम्बा मेजोगुआंग वायेनी भागर कन मांगसेवा केरेक सेवारु बाहा कन मांग सेवालाम थे इ सिक सनारुं के होसुम केरबा निंगवासो नु मुइंगहा मेदोंदुर इतनी मिजोगंग वा सयोंगले लुम युपो ताकन लकपा सीमा जाइन आयन बाग टुक्रा ओ लोंदेते आंग वा खुने बाग टुक्रा ओ लामधान मेदाक्तुर खुने सुखिम खामखु लेन थिबोंगंग ली सिनु थिबोंगंग नुसी खराक लेन सहंग युग पताकन ओ आनी खामगु ओ थांगे अंग वा आयन नामगेन सुखिम कांदक थुमरेन याक्थुंग हिम्मो सुंगांग रेन येक पा चुमलुंग थिक पोखे अंग वाये कन चुमलुंग इन सुखिम युग याक्थुंग सापसक सोंग जुम्बो रेन कुलक लाम कुलाम लो ओ पोखे अंग वाये कन थिम्बे रेन येक पा तरापिन आलो थांगेत मांगसिला पांगभे ओ नु मारताम पांगभे ओ
mang him lang go besang sirijanga nai chok ma ge bong ba samdang pharse chumlung po khyang wai ni bhagara kan chumlung o sukhim len liga pi sang ba yakthong chumlung ren passing padang ha ut munet po khyang khuni ang lok mero ang kan sirijanga yi nai akki ba chok ma bong kero ba pan samdang khuni pharse po khyang waye allo akhep chumla ba che tenga pi ba inghong chure allo kan inghong le ko egang আইন বা কন্নু সি চানলেন ঠিক সিগে পা সামমেগেন সামলো তোন্দুংল পাত্তা সামমেগেন সামলো সাম্মেপা রূপে সিয়াকথুংলেকু ইগলা ওয়া আবাগর সামলোলে আমেদ আতিনি কেধা সিং ল অরিকন সাম্মেগেন সামলোন খেপসুমং ইবিতলা রুমলো

0: chu ki sung ke nang ki sung lo di thang yam pu tharing ki ngachi lerim ki chamchi na chado ta di yable sambana ge sa dili le hindi ke na ne chi lenge chulo lerim de de ra sambana na shuji gom shudu yi thaji chi
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता अब केही बेरमै सुन्नुहुनेछ यस केन्द्रबाट क्रमैले नेपाली लेप्चा अनि सिक्किमे भुटिया भाषामा समाचार प्रतीक्षा साँच्नुहोला।

0: इन चुजी ऑनलाइन योगा लेरिम दीना ग्यागर की गैलरप लगी जैक जिन गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड दिन ऑंगलो कोने जाको इन से सोची लेम्पो प्रेम सिंह तमंग के ग्यागर ग्यागर की सिलेन नरेंद्र मोदी ला टाशी गाचुल फ्यूल जिन ले मिमांग थमसे लो यंग चुजी गाचुल फ्यूल बो इन लेरिम दीना डेंजोंग ले मिमांग तो चुले हाको ले ताको की न्यामचुप लेम्बो इम्बो शेदु न्यामचुप लेंकेन चुलो लाखर शुलजिन ले तमंग छकी मिमांग चुलो खजंग दे पिथेन लो हर गौर योग की लेथा यंग शेदु ग्यागर जुन की युलकल लेंचन हागं की बुजिन सीमा जेन थरिंग बागडुर एयरपोर्ट लो लेपो इन खोंग डेंजोंग लो जुंगडिल कोडबी थेन लो चाबो इन खोंग लो निंखोंग ना लेंबी लेंबा टीआईसी बागडुर यूनिट की प्रज्ञा तमंग दिले डेंजोंग जुन की नेकर लेला सोंगबोथंग जुंगडिल कोशे इंदा ठुकोई छि चुजिले छि चुबदिन संग कोशे इन एक्वा एक्स नॉर्थ ईस्ट लाप्ती नितो निशु चाटुई छि चुनी तंग चुसुम छि गुवाहाटी आसाम के मणिराम दिवान ट्रेड सेंटर MTDC नोंग लो जुंग एपे लेरिन दिना डेंजोंग जुंग की न्यापी लेला यांगना फिशरीज डिपार्टमेंट की यांग शुक लेम्बो इन लेरिम दिना डेंजोंग की न्यापी लेला ई लेरिम बुजिन नरेश सुनवार न्यापो गोपी सुंगमी कनिष्का शर्मा न्यापी लेला की अर्बन गुरुंग थंग सुदेन लिंबू की शु लेम्बो इन लेरिम दिना युजुंग खासा खाले जुंग लेंकेन चु की न्यापी लेका चुई थेन लो दालेन नेचुल लोग्यु चु थेन लो जुंगची प्याबो इन डेंजुंग जुंग की युलखाप चुई नोंग लो न्यापी लेका चुई थेन लो जिंगरिम रोटम फ्याशे इम्बी नेचुल या शेजादु तारिंग डेंजोंग रिगजुंग थंग फाजी यारगे नेचांग की गोपेन संजय दिलवाली राय की मंगन लो सालपो फ्यू एपे गेपा गे सापो रिगजुंग ग्यूचल यारगे की मंगन ड्रीम डांस एकेडमी गोपी नोंगबोबे लेरिम दीना मंगन नगर पंचायत की सीजन सिरिंग डोमा बुटिया खनियांचिक चांग जिंक्योंग क्रिकेट छपी सीजन रिंगजिंग नामगिल बुटिया ऑल सिक्किम डांस इंस्टीट्यूट की सीजन सुषमा छेत्री डिवोट आर्ट की छकमी नारी ऑफ टुडे छकमी दिन यामची लोपटू फम तंग योंगमी चुयांग जुदू गोपेन संजय दिलीपाली राय की लेरिम दीना मंगन ड्रीम डांस एकेडमी छकमी चुलो टाशी गाचुल फुलदू दिथंग यामची डेंजुंग जुंग की यांग दिदेमी लेरिम चुलो यारगे तंबी थेनलो रुराम नंबो इंसो संग संजय दिलपली राय की सीजन MNP श्रिंग डोमा बुटिया की डेंजोंग जुंग लो कामें से की तुझी गाचुल यंग फिल्बो इन डेंजोंग नंग लो येपी गेलकप डाम डोवामी थोपतंग लेकुंग IHRC शुकेन की ठीचंपो गेंबो यंग ना केग्यूर अमर बनिया लोहरो लो नितो निशु चाजीपी सत्या अकादमी अवार्ड लाभकेन थाकचि छिपो सर्पयंग फुलबबे लेरिम दिना IHRC नेतांग की गोपेन रोबिन राय सीजन इंद्रा कुमारी छेत्री तंग जिंख्योंग चुई नोंगले लेकुंग छकमिचु युदु सिरा शुजिन ले अमीर की थुजी गाचु फ्यूजिन माउंग पिथिना यंग धारुंग रंग केग्यूर दिलो यागे तोंगशे इम्बो सेजादु गेलजिन येनला की मिला जित हम्बा लो खोंग की चिचु लो फेनबी तेनले यो केपो चिक्लो रोरम नंगशे दि खोंग मिला जी लो क्योंसा ना भूति अंजुन एवरीडे हीरो अवार्ड लाभखेन सिरा नंगबे अंजुन एवरीडे हीरो अवार्ड सिरा थपखेनचु न्यू थट की लिपा विशु हंग सुब्बा सर्विस इस धर्मा शुकेन की लिपा संजय प्रधान चिचु लेमी तंग ग्राम पंचायत की सीजिन गणेश प्रसाद शर्मा तंग किक बॉक्सिंग की लाभखेन तंग चिचु लेमी गोपाल शर्मा शर्मा चु इन खोंकी सिरा 36 बहानी सर्वश्रेष्ठ सीमा बल की सेकेंड कमांडेंट जितेंद्र जोस चाले शुभ इन लुंगठेगा गातुले तरिंगी नेचुल नारो शुजुप इन थुजिचे
1: श्रोताहले हाम्रो यस प्रसारणलाई FM कञ्चनजङ्घा 103 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत छ एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत लेप्चा समुदायका परम्परागत बाजागाजा भाग एक।
2: विशिष्ट संगीत परंपरा और वाद्य यंत्र विश्व भर में लगभग सभी संस्कृतियों में मौजूद हैं, जिनका अध्ययन एक समुदाय के रूप में किसी भी जाति या जनजाति के इतिहास के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। वाद्य यंत्र के बिना संगीत को सुरीला नहीं बनाया जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम में आज का विषय है लेपचा जनजाति के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो शख्सियतें मौजूद हैं। पहली शख्सियत हैं मिकमा छेरिंग लेपचा, जिन्होंने लेपचा लोक संगीत की धरोहर को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 2011 में इन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही ये लोक संगीत की श्रेणी में आकाशवाणी के अनुमोदित बी हाई ग्रेड के कलाकार हैं। मिकमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: पहले तो मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से हमको आकाशवाणी गांतोक में जो लेपचा का लोक संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है इसके ऊपर में बोलने के लिए आपने जो इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम स्पेशली ये लेपचा फोक इंस्ट्रूमेंट जितने भी है मेरे पास, जिसको हमने सीखा है, उसके ऊपर में हम आपके साथ में बात करेंगे।
2: लेपचा जनजाति के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों पर बातचीत करने के लिए मिकमा छेरिंग लेपचा के अलावा जो दूसरी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है श्री पार्थोशील। पिछले 7 वर्षों से पार्थोशील सिक्किम विश्वविद्यालय में लेपचाओं के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों पर अनुसंधान कर रहे हैं। पार्थो जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूँ AIR गैंगटॉक की, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है। मैं जिस चीज के ऊपर मेरा शोध कर रहा हूँ उसको मैं सबके सामने बोल पा रहा हूँ, और थैंक यू सो मच मिकमा छेरिंग लेपचा दादा मुझे ये मौका देने के लिए, उनके साथ हेल्प करने का। थैंक यू सो मच।
2: आज का हमारा जो विषय है लेपचाओं के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र, इस विषय पर बातचीत के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी मिकमा जी कि एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी लेपचा लोकगीत के माध्यम से आप इस कार्यक्रम का आगाज करें।
3: Sure.

0: जी मिकमा जी, आपने बहुत ही सुरीले अंदाज में आज के हमारे इस कार्यक्रम का आगाज किया है, समा बांध दिया, माहौल बना दिया है आपने। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है जिसमें हमने ये रखा है कि लिप्चा जनजाति के पारंपरिक वाद्य यंत्र, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, एक परिचय करवा दीजिए हमारे श्रोताओं का कि ये लिप्चा वाद्य यंत्र में क्या क्या आते हैं।
1: जो हमारे लिप्चा जनजाति में जो लोक संगीत में प्रयोग होता है, बहुत किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट है जो विभिन्न किस्म के वे ऑफ लाइफ से जुड़े हैं, उससे इवॉल्व होके आया है, उसके रिलेटिंग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि तंगबुक हो गया और सत्संग है हमारे पास, पोपोसोंग है, कुंग्योल, पुनतोंग प्लीट, पोपटेक, न्यूब्रियोक प्लीट, ग्योम प्लीट, वीम प्लीट, बम पथ्यूत, सुनोल, फ्यूत प्लीट और टंगलिंग, बांगो है, तंगदार बोंग है। सो इसके ऊपर में ये सब चीज नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन जो है हम लेके आया है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज आपके साथ।
2: मिकमा छेरिंग जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे लेपचाओं के जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई और वो जनमानस के सामान्य जीवन से किस तरह जुड़ पाए।
1: लेपचा का जो इंस्ट्रूमेंट्स ये जितने भी है हमारे पास में, ये किसी न किसी तरह से ये एक मानव जनजाति जो इवोल्यूशन जो इवॉल्व होके आया है, जैसे कि प्राचीन जमाने में हम लोग हंटर्स गैदरर्स थे और उसके बाद में हम लोग फार्मिंग सीखे और उसके बाद में ये जो अभी हम जॉब करते हैं, ये सब जैसे कि मॉडर्न टाइम्स का जो मांग है उसे पूरे करते हैं अभी। इसी तरह से लेप्चा म्यूजिक में भी, जैसे कि हंटर गैदरर्स के टाइम में किस तरह का ये जो अभी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स बोल के हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चीज उस समय का एक लाइफस्टाइल का पार्ट थे। अभी जो हुआ कि हम लोग हंटिंग करते भी नहीं है, अभी छोड़ दिया सब, यही चीज जो अभी लाके हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो हम यूज कर रहे हैं अभी, तो एक ऐसा होके भी आया है और किसी तरह से और फार्मिंग में आ गया हम लोग। फार्मिंग में आके उस वक्त भी जैसे कि पेस्ट जो आते हैं हमारे खेती जो किया है उसे खाने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए जब आते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये चीज भी वहां से इवॉल्व होके आया है। जब वो यूज होते थे तब, तो अभी आके ये इंस्ट्रूमेंट जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसी तरह से आए हैं। और हमारा जो वेरी वेरी ओल्ड कस्टम शमानिज्म जो बोलता है, मन और बुंगथिंग है, उसका जो प्रेयर जो रिसाइट करता है वो लोग, हम लोग बोलते हैं बुंगथिंग, जो बुंगलैंड के बहुत अथिंग बोलता है उसे, मतलब मास्टर्स ऑफ वर्ड्स। और मन है, मन जो बहुत किस्म, जैसे कि जन्म लेते हैं हम, उस वक्त भी हमारा कोई किस्म का जो कार्य करते हैं हम लोग शादी के बाद में और मरने के बाद में, उस टाइम भी वो मन लोग बहुत बुंगथिंग मन लोग इन्वॉल्व रहता है। उसी का जो प्रेयर रिसाइटेशन का जो स्टाइल है उसी से इवॉल्व होके भी हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स है। ऐसे तरह से हमारे और बाद में आया किंगडम सेटअप हुआ, उसके टाइम में वॉर के कारण से वॉर में जो खुद के सोल्जर्स को जोश दिलाने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व हुए, वो भी है हमारे पास में, तो ये सब ऐसे होके आए हैं हमारे।
0: मिकमा जी, जैसा कि हमें हम जानते हैं कि लिप्चा जो जनजाति है वो प्रकृति के एकदम करीब रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं और

0: हम देख रहे हैं कि आपने जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ लेके आए हैं सब नेचुरल हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। तो एक एक करके इसके बारे में बताते हुए और इसको क्या कहते हैं और इसकी एक धुन हमारे श्रोताओं के लिए रख दीजिए।
1: अभी मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको पोपटेक कहता है। इसका जो लिटरली वर्ड ट्रांसलेशन किया था, अगर इसका पोपटेक क्यों नाम रखा, शायद हमको लगता है कि ये जैसे कि साउंड इससे निकलता है उसी के जो आधार पर एक रिलेट करके इसको नाम दिया है, इसको पोपटेक। पो का मतलब होता है बांस, जैसे कि टेक टेक ये बजता है, तो पोपटेक शायद वही सोच के रखा होगा। ये चीज जो है पोपटेक, ये हंटिंग जो एक्टिविटीज था हमारे कम्युनिटी में प्राचीन काल में, उसी टाइम से ये इवॉल्व होके आया है। जैसे कि हम लोग हंटिंग के लिए जाता है और एनिमल्स को उसके पीछे भगाने के लिए, कोई तो रास्ता रुक के बैठा है मारने के लिए, तो एक टीम होता है कि पीछे से वो पत्थर वगैरह फेंक के और सीटियां बजा के और ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके बजा के, जैसे कि ऐसे करके भगाते हैं
0: जी।
1: एनिमल को। और इसके साथ में ये जो अभी हमारा पार्थोशील भाई है, जो इसके पास में ये बम पथ्यूत है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हंटिंग के टाइम में यूज किया,
0: काफी छोटा भी है
2: सिग्नलिंग के
0: दिखने में।
1: सिग्नलिंग के लिए,
2: मतलब हम बात करेंगे तो भाग
1: भाग
2: जाएगा
1: जाएगा।
2: एनिमल्स।
1: तो इसके बर्ड्स के साउंड क्रिएट करके, और इसका कोडेट है, मतलब कोडेट जैसा जैसे कि वॉर टाइम में होता है जो टेलीग्राम जो भेजता है ना, वैसी की तरह से ये एक टेलीग्राम के जैसा काम करता है। तो सिग्नल करके आवाज दे दे आ रहा है, ये सब मैसेज कोडेट होता है। थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर दे इसको।
2: जैसे डिफरेंट, अभी जो कुकू बर्ड है उसका साउंड
0: कोयल
2: भी से, कोयल जो उसका है, फिर दूसरा टाइप का बर्ड का साउंड ऐसे निकलता है। ऐसा करके निकलता है।
1: और इसी तरह से दूसरा भी है, ये फ्यूट प्लीट बोलता है इसको, ये भी इसी तरह से यूज करता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है बम पथ्यूत और फ्यूट प्लीट जो बोल रहे हैं हम, ये वॉर का टाइम में भी बहुत यूज आया है इसका, संदेश के
2: डिफरेंट टाइप का मैसेज सेंड करते हैं। लेकिन इस दोनों में बेसिक जो फर्क है वो है ये सिंगल पीस ऑफ बेम्बो से बना हुआ होता है,
0: जी।
2: एक ही होल से बजाते हैं। लेकिन ये जो
1: फ्यूट फ्यूट प्लीट फ्यूट,
2: इसमें एक माउथ होल होता है जिससे ब्लोइंग करना पड़ता है, और उसका जो ट्यूनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा एक साइड में यूज होता है,
1: ओपन एंड,
2: ओपन एंड होता है। तो इसका साउंड ऐसा होता है।

0: ये जो अभी जो हम दिखाया इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये पोपटेक दिखाया, और इससे पहले हम और एक भी दिखा देंगे आपको
1: जी
0: जो इसी का फील से रिलेटेड हुआ है। पहले हमने हंटिंग का बात किया और थोड़ा सा वार का भी आ गया, और अभी हम बात करते हैं ये फार्मिंग का फील के लिए। तो ये जो पोपोसोंग है वर्क्स ऑलमोस्ट लाइक ये जो पोपटेक है इसी का तरह, लेकिन इसका साउंड थोड़ा मोटा है और ये इंस्ट्रूमेंट का साइज भी थोड़ा बड़ा है,
1: बड़ा है।
0: क्योंकि ये जिस चीज से मिनिएचर इसका बनाया है वो बहुत बड़ा बांस से बना होता है। क्योंकि जब हम खेती करते हैं, खेती करने के समय में वो जो अन्ना बाली जो होता है हमारा, उसको खाने के लिए बर्ड्स वगैरह, मंकीज, ये सब आते हैं। हम छोटे थे तब भी हम
1: जी
0: देखा है, ये लकी है कि हम ये चीज देखा। तो हमारे जमीन में हम लोग किचेर किचेर को क्यों बोलता है, मोंग बोलता है, जैसे मिलेट्स और ये चीज सब फार्मिंग करते थे। एवरी टाइम एवरी डे हम एक आदमी जाके वो चिड़िया को बगाने
1: बगाने के
0: के
1: लिए
0: लिए जाने से बहुत थक जाते थे, हम बोर हो जाते थे, मतलब काम बहुत हो जाता है। तो क्या करते थे, एक फील्ड में एक बड़ा सा पेड़ ढूंढो, और ऐसे बैम्बू थोड़ा वे हमारे लोअर बेल्ट में मिलता है, बड़ा बड़ा बैम्बू होता है, उसको जैसे कि 8 फीट 10,
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब

0: मोदी सरकार आई है बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है, और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
1: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
0: जी।
1: उसका प्रमुख बिंदु एक तो यह था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
0: जी।
1: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
0: जी।
1: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
0: जी।
1: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
0: जी,
1: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
0: जी,
1: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
0: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
0: बिल्कुल
1: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है और उसका

0: जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के, जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहें तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप हो रहा है स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप,
2: शरीर के जो अंग है उसके हिसाब से मेजर करके वो बनाया जाता था। लेकिन उसमें जो साउंड निकलता था, जब से ये मीडी सिस्टम आया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही ट्यूनिंग चलने लगा,
3: स्टैंडर्डाइज
2: हो गया। तो उसमें और एक चीज हुआ जो है इक्वल टेम्पर्ड स्केल। इक्वल टेम्पर्ड स्केल मतलब कोई ऊंचा कोई नीचा, सबको एक करने के लिए एक लेवल में उसको कर दिया, इक्वल टेम्पर्ड हो गया। लेकिन लेप्चा इंस्ट्रूमेंट में वो पहले नहीं था, उसमें उसके हिसाब से दिल के हिसाब से बनता था। इसके पीछे काफी सारा स्टोरी है, बुनतंग में दादा बताएगा, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ कि बुनतिंग बोल के एक हॉली प्रीस्ट होता है लेप्चा में, बुनतिंग। तो बुनतिंग एक बार पैडी फील्ड में काम करने के लिए गया था, तब उन्होंने देखा बर्ड्स पैडी फील्ड को खराब कर रहा, तब उन्होंने वो बर्ड्स भगाने के लिए आया, और तब बहुत हवा चलता है पहाड़ में, तो एक बैम्बू में एक होल था, वो शायद कोई भी कीड़ा भी कर सकता है और बर्ड्स भी कर सकता है, तो उससे साउंड निकला। और उसके बाद वो साउंड से उन्होंने वो इन्वेंट किया कि ऐसे भी बजता है, तो उन्होंने लाया वो बम्बू काट के फिर उसको 4 होल करके बजाने लगा। और जैसे वो होली प्रीस्ट है, तो उन्होंने जब वो बजाने लगा तो उन्होंने ये देखा कि जो उन लोगों का जो गॉड है, उन्होंने रिस्पॉन्स करने लगा। तब उन्होंने जाके राजा को बताया, तो राजा ने तब बताया कि ये पुनथंग पाली कोई भी होली फेस्टिवल या कोई भी जब स्पीशियस ओकेशन होगा तब ये बजाया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसका रागा जो होता है, हमारा रागा और स्वरा वो दो अलग होता है। मतलब जैसे राग मारवा, पुरिया और सोहिनी, ये तीन रागा का स्वर एक ही है, लेकिन उसका राग अलग है, क्योंकि राग होता है एक कैरेक्टर, एक चेहरा। तो इसमें एक राग का हिंदुस्तानी क्लासिकल का डिसेंडिंग नोट के साथ मिल है, वो है राग जोग, सा कोमलनी पा मा फिर कोमल गा सा। तो मैं थोड़ा डेमोस्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ।

0: ये है जो सेम डिसेंडिंग नोट जो है उपुंतंग में बजेगा। इसमें एक हिसिंग साउंड यूज होता है।
1: पुंतोंग जो बजाता है तो डिफरेंट आर्टिस्ट का ये खुद का एक दिल से आया हुआ एक मेलोडी बजता है। जैसे ये सोनम सिंह तामसंग जी जो थे जब वो बजाते थे उसका दिल में जो आया वो बजाते हैं। मेरे हाथ में ये पुंतोंग है तो मेरा दिल में जो आता है उसी चीज को ट्रेडिशनल जो फील है उसको बेस करके हम लोग बजाते हैं, तो ये एक पेश कर रहा हूँ।

एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम में आज का विषय था लेपचा जनजाति के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र। आज आपने सुना इसका पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकते हैं अगले रविवार शाम 6:55 पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यही समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरेलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और

0: विदेश मामलों के मंत्री जॉन ऑयल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइन थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे

0: जैसे देशों के लिए।
1: स्पेशली दी कंट्रीज लाइक आर्स।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders